0: संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
1: आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
0: आवो संत मिलो मेरे भाई।

ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई, जब ती सात संग में पाई ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब तीनों सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई, सब में रव रहे अपना भी कह देख देख नानक साई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने यह तराना जेड़ा है ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असां वी वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए, कहिंदे गाए ते तुसीं सुनाओ, ये तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी ये सानू लिखा दिओ तराना, असी तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही यह दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की, इत दुरगाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना श्रवण करना, साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ केन्द्र विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना तो तद्र दानी दानी सोमलानी तल सोम तिरना, तद्र दानी दानी सोमलानी तल सोम तिरना, तल सोम तिरना, तल सोम तिरना, तल सोम तिरना। जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज नु मत्था टेकना जे, तुम दानी हम भिखारी है और तुम दानी है, तत्र दानी दानी तुम दानी तलल तुम दिरना, तत्र दानी दानी तुम दानी तलल तुम दिरना, तलल तुम दिरना, तलल तुम दिरना, तत्र दानी दानी।

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, बिरना जो है ये सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार वजदा और दीन जड़ा है वचित्र वीणा वजदा, ये साजा के दर्शन कराए ने।

पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत इस रात तो दाई दया खेले करनी अप अपनी सारे जपो जिन्नी नाम जय मसक नानक

कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जानी जान कट कट के अंतर की जान तू भले

स्वामी सब विद जाने प्रा मेरा अंतर जामी जान हर अंतर जामी सब विद जाने और किस पै आप सुनाए

0: हैं मानुक अब मान ले प्रभु मेरा अंत जामी जान
1: ओ प्रभु सब कुछ जान दे साहब आख देने जी की बिरथा होए सो गुरु पै अरदास कर
0: जे तेरे मन अंदर कोई भावनी है ना
1: ते आके गुरु अग्गी अरदास कर
0: ओ गुरु भावनी पूरी कर दे वे
1: खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है
0: इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए
1: जो खाली चोली आए ने पर के गए ने जो रोंदे आए ने हंसते गए ने ये तो दरबार ही ऐसा है कौन खाली गए आओ पछोकर त्यास पक्को जरा
0: जे गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया
1: है ऐसा दरबार कोई
0: सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे
1: चोली विच दान पा दिता जावे उस दाते दे दरबार च आए
0: कि असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकदा आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दे नाल मंग कर लई
1: ते प्रभु कड़ा है
0: प्रभु मेरा अंत जामी जान तू करता सब किछ जानदा
1: गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए
0: दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए दान मिल जांदा है
1: आ कि कहिए तू करता सब किछ जानदा तू तो जानना है परमात्मा मेनू की चाहिए
0: मेनू की लोड़ीद है मेरे मन अंदर इच्छा की है मेरी भावनी की है तू परमात्मा जानना है तेनू दसण की कोई जरूरत नहीं

जो मंगा सो लेवे प्रभ अपने संतां दे वे। ओ प्रभु अंतरजामी जानदा है अपने सेवकां नूं सिखां नूं संतां नूं सब कुछ देंदा है जिहड़ा आके की देती भरोसे दे नाल इस दर तों मंग लैंदा है। आओ सारे मिलके मंगिए।

0: अमल कर, क्योंकि साहबा ने आखे अमल तो बिना रहा नहीं जाता, अमल कर।
1: अमल जे कीते दुनी विच दर्द आवे कम,
0: अमल कर। कैसा अमृत वेले उठ, नाम जप सिमरन कर, गुरु दरबार विच आ, ये अमल कीता तेरे दरगाह विच काम आवेगा, सफला होवेगा, ये तेरा अमल तेरी सहायता करेगा। ते असी भी ऐसा अमल करना है जिस अमल लई सतगुरां ने सानू बाणी विच उपदेश दिता है। आखदे ने बाबा मन मत मारो, नाम रस पीवे, नाम रूपी रस प्राप्त कर, ओ अमल पी जिहड़ा अमल हमेशा ही चढ़िया रवे। सतगुरु नू कैसा अमल सी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दा अमल करिया करदे सन जिहड़ा उतरदा ही नहीं सी, लैंदा ही नहीं सी, हर वक्त चढ़िया रहिंदा सी, अठे पैर रहिंदा सी। असी भी ऐसा अमल करना है।

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता, जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नू उपदेश देंदे होए ए गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नू भी माड़ा आखिया? ओ ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा, शुभ गुणा दे नाल हुंदा। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नू चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरे पातशाह, मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें

कंचन नारी में जियो नोबत है, बहु मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल ढंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई ढंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साईं, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सतसंग तो ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ। सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप।

0: करेंगे।
1: हम पापी तुम पाप खंडन।
0: हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले किवें चंगे हो। हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल दे

0: हम अवगुण तुम उपकारी,
1: मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो,
0: मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे।
1: ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन।
0: एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी,
1: कहिंदे ने हे परमात्मा तू किन्ना दयालु है।

0: ना खंडस अवगुण मेरा।
1: हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे

कैसा अपराध है। रात पैंदी है सौ जाने है, दिन चढ़दे उठ के कमां कारां नूं तुर पैने है, ते परमात्मा दा नाम कदों जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन ले ना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा होया।

ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि हे मेरे मालक असी कहो जाए अपराधी हाँ, साडे अंदर किन्ने को औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया, कहने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकता है। ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां की संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नूं नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस हजूर बख्शिश करते हैं कि ये गुरु की शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नूं, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

0: पानी पिता माता धरत महत दिवस रात गुणदाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाचे धर्म दूर कर्मिया को अपनी के मेरे के दूर जिन्नी नाम गे मशक्त का
1: मांगो राम से एक दान आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड पॉज मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट And may I find the society of the saints. May my mind not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक एक सिंह ने

हमारी जेबा एक ग्राम हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे आ हर तुम बड अगम अथाह।

0: करसम एंटी कृपा करसम
1: बेनती शर बेनती बेनती हरि
2: कृपा कर तू
1: बेनती हरि रे रे रे रे

तब मैं तो तीसरे दस्त में भोगी त्याय त्याय भक्त है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।